हॅलो, गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर. उठा उठा, सकाळ झालीये. आणि आता तुम्ही विचार कराल की यार हा कशाला उठायला सांगतोय आम्हाला. माहिती माहिती, आज ना तर अनेक जण सिक लीव वर असतील. मतलब क्या होगा उनका प्लान. देखो यार, आज तो सैटरडे, कल गांधी जयंती की छुट्टी थी, आज सैटरडे कल संडे, तो मैं लॉन्ग वीकेंड लूंगा. बट सैटरडे को रीजन क्या दूंगा, सिक लीव. अचानक से मैं बीमार गिर गया. पता है यार को ये करता है एम्प्लॉय, भाई इतना लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है तो चांस कौन छोड़ेगा. और आज तो बस आराम करने वाला दिन है, सो आराम तो कीजिएगा, लेकिन उसके साथ एंटरटेनमेंट की सौगात भी रहेगी मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ. और आज है वीकेंड का वार शनिवार. लॉन्ग वीकेंड तो मिल चुका है भाई, बड़े खुश नसीब हो आप, लॉन्ग वीकेंड का एंजॉय कर रहे हो. वरना हम जैसे लोग ऑफिस में आज भी आते हैं, क्योंकि आपका एंटरटेनमेंट करना पड़ता है ना, इसीलिए. तो चलिए फिर आप एंटरटेनमेंट की सौगात को आगे लेकर जाते हैं और आज के शो का आगाज करते हैं कुछ मेरी और कुछ आपकी बातें करते हैं और ढेर सारी डंबों के साथ आज का सैटरडे एकदम खुशनुमा तरीके से गुजारते हैं. सो अभी तो शो का आगाज हुआ है, बहुत सारी बातें होगी आज के शो में. पहले एंजॉय कीजिएगा आने वाला सुपर से डुपर हिट गाना, जो आपका वीकेंड का मूड एकदम फ्रेश कर देगा. सो चाय की चुस्की के साथ ये गाना एंजॉय कीजिएगा. चाहला वेळ नाही पण वेळेला चहा पाहिजे. ओनली ऑन MGM 90.8 FM.

किस्सों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। पूरा हफ्ता काम का प्रेशर, मीटिंग का बचा कुचा पेशेंस, ट्रैफिक का हंगामा और बॉस के नए नए तरीके का टेंट्रम। इंसान बस एक चीज ढूंढता है, वो है सुकून। आरजे अदनान को आप सुन रहे हो। मुझे याद है बचपन में जब मम्मी थक जाती थी तो वो वीकेंड पे हमें ले जाती थी एक छोटी सी जगह पर, एक नदी किनारे। वहाँ कोई शोर नहीं होता था, कोई डेडलाइन नहीं, बस पानी का हल्का हल्का बहना, मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवाओं का झोंका। वहाँ जाके मम्मी कुछ नहीं करती थी, ना फोन ना बातें, बस पेड़ के नीचे बैठ जाती थी, कभी आँख बंद करके, कभी नदी की लहरों को देखती, और हम लोग भागते खेलते हुए वहीं रहते थे। तब समझ नहीं आता था कि वो सुकून क्या होता है, पर अब जब खुद पूरे हफ्ते थक जाता हूँ तो याद आता है वो नदी का किनारा। और एक बार फिर मैं भी किसी वीकेंड फ़ोन बंद करके लोगों से दूर अपने सुकून को ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी पूरी भाग दौड़ में गुजर रही है, पर हर किसी की ज़िंदगी में एक नदी का किनारा होता ही है। चाहे वो चाय की दुकान हो, बालकनी का झूला हो, या सिर्फ एक लम्हा खुद के साथ हो। तो इस वीकेंड अपना सुकून ढूंढिएगा, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। सो ये महसूस कीजिएगा, और बस आप नहीं, आपके बॉस को भी कहिएगा कि ये सुकून महसूस कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। इसको भाग दौड़ में मत गुजारिएगा, सुकून के लम्हे में जीते रहिएगा। किस्सों का कारवा में आरजे अदनान आपके साथ है, और ये कारवा आपको कैसा लगता है जरूर बताना। DM ऑन इंस्टा आरजे अदनान, एंड सुनते रहना। किस्सों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: वैसे यार आप लोगों की बहुत फरमाइश होती है और हर फरमाइश मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। All is well. On MGM 90.8 FM. So यार आज के गाने की फरमाइश आई है अमृता देशमुख जी की तरफ से इस गाने के लिए।
1: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है यार, अमृता जी ने बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। चलिए फिर इनकी फरमाइश पूरी करते हैं। और हाँ, आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश होना तो व्हाट्सएप करें 9359320080 पर, 9359320080। तो इस नंबर पर आपकी फरमाइश बताइए और फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिएगा अमृता जी का फेवरेट गाना एंड सुनते रहे MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: हमें प्यार।
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, NH5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

बढ़ती उम्र होती है और हमें लगता है यार इतनी तो खतरे की बात नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे, हमें बहुत आता है, हमें मत ज्ञान दीजिएगा, हमें मत सिखाइएगा, आप कौन होते हो हमें टोकने वाले, मैं तो वहां तक चला ही जाऊंगा। क्या है ना, ऐसा जब हम घूमने वगैरह जाते हैं ना किसी फ्रेंड सर्कल के साथ अपने ग्रुप में ट्रिप पर, और जब पानी वगैरह होता है तो ऐसे सारे थॉट्स आते हैं, आपको वहां के लोकल लोग बाकी लोग भी कहते हैं कि यार ज्यादा दूर मत जाइएगा, लेकिन वो जोश होता है और वो कभी जोश ठंडा गिर जाए और आपकी जान चली जाए पता ही नहीं चलता। अब देखो, और वहां पर डूबकर 8 बच्चों की जान चली गई। एक छोटी सी गलती ना जिंदगी भर का बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है, और ये बस एक जगह की न्यूज नहीं है, ऐसे बहुत सारे जगहों पर होता है। फिलहाल लॉन्ग वीकेंड है, फेस्टिवल सीजन है और छुट्टियां है, तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे घूमने के प्लान्स बना रहे होंगे, कहीं समंदर में बीच के किनारे जा रहे होंगे, किसी पहाड़ पर जा रहे होंगे। तो एक बात याद रखिएगा भाई, जेन्युइनली याद रखिएगा, सबसे कह रहा हूं मैं भाई, तुझसे भी कह रहा हूं दीदी, तुझसे भी कह रहा हूं, अगर आपको किसी जगह का कोई अंदाजा ना हो, आपको पता नहीं कि यार आगे क्या है, तो प्लीज रिस्क मत लीजिएगा। अब ये सारी बातें तो आपके पेरेंट्स टीचर हर कोई समझाता है, और वो होता है ना एक माइंड कि यार तू भी क्यों बता रहा है, हमको सब पता है, मेरे को मत सिखा। मैं सिखा नहीं रहा हूं भैया, और दीदी मैं आपको भी नहीं सिखा रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं। देखो 8 बच्चों की जान चली गई एक साथ, उनके पेरेंट्स पर क्या बीतेंगी, उनके साथ जो उनके दोस्त थे उनको तो लाइफ टाइम का सदमा ही बैठ गया कि यार एक गलती से इतनी बड़ी सजा उन्हें मिल गई है। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ ना हो और ऐसी दुर्घटना का शिकार आप लोग ना हो, इसी वजह से हम सभी लोग आपसे कहते हैं कि यार प्लीज, कहीं आप घूमने जा रहे हो ना तो अगर कोई जगह की इन्फॉर्मेशन ना हो तो वहां पर हीरो बनकर आगे जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एक गलती से पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है, समझे। बी सेफ बी केयरफुल, इतनी बात आपसे करनी थी। स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: लेट्स टॉक अबाउट सिटी अपडेट। सिटी अपडेट में बहुत इम्पोर्टेंट बात है रिलेटेड टू त्योहार और मिठाई के बारे में। तो बात कुछ ऐसी कि देखो, फेस्टिवल सीजन अभी शुरू है और बहुत जल्दी नवरात्र उत्सव शुरू होने वाला है, फिर दशहरा, दिवाली और इस दरमियान तो मिठाई आय हाय हाय हर जगह लगती है। मिठाई के बिना कोई भी त्योहार सेलिब्रेट हो ही नहीं सकता। और जब मिठाई की बात आ रही है तो मिलावट की बात आ ही सकती है। तो अब इसी बात को देखते हुए अब FDA ने एक फैसला लिया है, ये पूरे फेस्टिवल सीजन में दिवाली तक भाई हर एक दुकान के ऊपर एकदम बारीकी से नजर रखी जाएगी। और किसी दुकान के ऊपर कुछ तो गड़बड़े दया ऐसा नजर आया ना, तो उस दुकान पर कार्रवाई हो सकती है और उसका लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो सकता है। स्पेशली मिठाई की जो दुकान है ना, तो उनके ऊपर बारीक से बारीक नजर रहने वाली है और होनी भी चाहिए यार। हर साल हम देखते है कि कितनी मिलावटी मिठाई, खवा हो, मिठाई हो, गुलाब जामुन हो, पेड़े हो, हर एक चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो यही सब गड़बड़ इस साल ना हो और फेस्टिवल सीजन में हम रियल और अच्छी और फ्रेश मिठाई खा सके, इस वजह से FDA ने फैसला लिया है। तो मिलावट करने वाले गैंग जरा बच के रहिएगा, कब आपका कट जाएगा ना और आपको पता भी नहीं चलेगा, सीधे आप हवालात की हवा खाते हुए नजर आओगे। तो इसीलिए सारी मिठाई वाली दुकानों से दरख्वास्त है कि आप भी जो माल रखते हो ना, समझ गए ना कैसा रखना है, एकदम फ्रेश रखना है, वरना थोड़ी सी भी गड़बड़ तो पूरा बिजनेस आपका खराब हो सकता है। सोचिए फेस्टिवल सीजन में बिजनेस खराब हो जाए, अच्छा नहीं ना। तो इस वजह से रूल्स और रेगुलेशन के तरीके से सामान बेचिएगा और मिलावट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना एक मिलावट के चक्कर में आपका नुकसान बहुत बुरा हो सकता है। और हाँ, आप सभी से दरख्वास्त है, आप भी अगर किसी दुकान से खरीदी कर रहे होगे, वहाँ पर चेक कीजिएगा कि जो मिठाई वगैरह मिल रही है वो फ्रेश है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ नजर आती है तो FDA की हेल्पलाइन पर आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, www.fosco.fssai.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। या तो फिर आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कीजिए 1800-222-365, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर FDA की हेल्पलाइन नंबर है ये 1800-222-365। याद रखिए, सेफ रहिए एंड सुनते रहिए
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

फेक पनीर के बारे में तो हम सभी ने सुना है, क्या कभी आपने फेक आईएएस ऑफिसर के बारे में सुना है? तो बात कुछ ऐसी है कि बिहार में एक फेक आईएएस ऑफिसर पकड़ा गया। वो 10 सालों से घूम रहा था एज अ फेक आईएएस ऑफिसर, और इन 10 सालों में उसने कमाई कितनी की होगी जानते हो? तकरीबन 100 करोड़ की कमाई की है। इमेजिन, फेक वाले 100 करोड़ कमाते हैं तो रियल वाले लोग इतनी मेहनत करते हैं कुछ नहीं कमा पा रहे, लेकिन लोग झूठ बोलकर अपना साम्राज्य बनाते हैं। लोग बोलते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन झूठ बोलने वाले का फल 100 करोड़ का होता है। एक्चुअली इसका स्कैम किसने एक्सपोज किया जानते हो? उसके बेस्ट फ्रेंड ने। इसे कहते हैं आस्तीन का सांप। बाय द वे, ऐसे सांप आपके आसपास भी होंगे तो थोड़ा बच के रहिएगा, वरना वो भी आपको किसी दिन ऐसे ही डसेंगे। बाय द वे, ऐसा भी कहा जाता है कि बिहार इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स दैट्स प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूपीएससी कैंडिडेट्स आई थिंक इन द फेक कैटेगरी आल्सो। देखो, फेक आईएएस बनना इजी है क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक का टेंशन ही नहीं है। और लोग अक्सर कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, आई थिंक इट शुड बी मेक इट टिल यू फेक इट। सो थोड़ा बच के रहिएगा। वैसे ऐसे आईएएस ऑफिसर तो कम ही रहेंगे, लेकिन बच के आपको उन जैसे आसिन के सांपों से रहना पड़ेगा, समझे?

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

बातें करते हैं, क्योंकि जब से टैक्स देना शुरू किया है तब से मैं और मेरी तनहाई बचे आपस में बात करने के लिए। मैं पैसा कमाता हूँ, टैक्स में गवाता हूँ। मैं खर्च करता हूँ, फिर भी टैक्स में गवाता हूँ। मैं सामान खरीदता हूँ, टैक्स देता हूँ। बैंक में रखता हूँ तो भी टैक्स देता हूँ। म्यूचुअल फंड से निकालता हूँ तो भी टैक्स भरता हूँ। घर पर रहता हूँ तो भी टैक्स देता हूँ। सब छोड़ छाड़ के मोह माया से दूर जब सड़क पर आता हूँ तो टैक्स देता हूँ, रोड टैक्स। और मैं गाड़ी चलाता हूँ तो टोल टैक्स भी देता हूँ। नौकरी करता हूँ तो इनकम टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स। और अगर बिजनेस करता हूँ तो इतना काटा गया हूँ कि कट कट कट के खरबूज बन चुका हूँ। आम आदमी की जिंदगी में कमाई इतनी नहीं है जितने उसको टैक्स पे करना पड़ता है। और बदले में क्या मिलता है? एकदम नई नई सी गड्ढे वाली सड़क, खराब पानी और पोल्यूशन से भरी हुई हवा। बस टैक्स के बदले यही तो मिलता है। खैर, अब मैंगो मैन यानी कि आम आदमी करे तो करे क्या, आखिरकार उसको जाकर वापस से टैक्स ही पे करना है। सो कमाई जरूर कीजिएगा और टैक्स भरते रहिएगा। देखो, बात कुछ ऐसी है कि टैक्स भरना अच्छी बात होती है, लेकिन बदले में कुछ अच्छी चीजें तो मिलनी चाहिए ना। वो कब मिलेगी वो तो नहीं पता, लेकिन बदले में आपको एक अच्छा गाना सुनने मिलेगा, हुआ भी मेरे इस शो में। स्टे ट्यून्ड।

0: मंडे से फ्राइडे तक हम सब एक रेस में भागते हैं। टाइम पे उठना है, ऑफिस जाना है, काम कंप्लीट करना है, डेडलाइन संभालनी है, और इन सब के बीच कभी कभी ना हम खुद को ही भूल जाते। होता है ना ऐसा, सभी के साथ होता है यार। लेकिन फिर आता है वो दिन जिसका हमें इंतजार होता है, दैट्स कॉल्ड सैटरडे। और एक ऐसा दिन जब लाइफ थोड़ी स्लो करने का मन करता है, ना किसी डेडलाइन की टेंशन, ना हर वक्त प्रोडक्टिव रहने का प्रेशर। कभी कभी ना तो बस अपनी फेवरेट चाय लेकर बालकनी में बैठ जाना भी जरूरी होता है। और कभी बिना किसी प्लान के म्यूजिक सुनना, कभी दोस्तों के साथ मिलना, कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और कभी कभी तो बस सो जाना। क्योंकि वीकेंड का मतलब सिर्फ बाहर जाना या पार्टी करना नहीं होता है, वीकेंड का मतलब है थोड़ा सा वक्त खुद के नाम करना है। तो आज क्या है, वही दिन है वीकेंड, यानी कि सैटरडे वाला दिन। मतलब मंडे की टेंशन मंडे को देखेंगे, आज थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और अपनी लाइफ को फील करो मेरी जान, बिकॉज समटाइम्स कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करने जैसा होता है। तो ये बात को याद रखिएगा और सैटरडे खूबसूरत तरीके से गुजारिएगा, चाहे दिन हो या रात हो, बेहतरीन हो ही जाएगी आपकी। यही एक मेरी ख्वाहिश है कि आपका अच्छे से सैटरडे गुजरना चाहिए। बाकी ख्वाहिशें और भी दोगुनी करते हैं ब्यूटीफुल से गाने के साथ, वो काम मेरा है। मैं अभी प्ले करूंगा और आपका मूड सेट करूंगा। स्टे ट्यून्ड
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से में आरजे अदनान आपके साथ है और आज हम बुमरो इस गाने के बारे में बात करेंगे। वैसे बुमरो का मतलब होता है भवरा। ये कश्मीर गाना तो एक लोक संगीत है जो कि शादी से पहले मेहंदी पर गाया जाता है और इस गाने का मतलब होता है कि वो शुक्रिया अदा कर रही है भवरे का जो कि बगीचे से रंग लेकर आया है। गाने की कंपोजिशन ली गई है बोम्बर ता यंबर जल, ये कश्मीर के पहले ओपेरा से। यंबर जल इसका मतलब होता है नरगिस का फूल और बम्बर भी यानी के भवरा। इस गाने का मतलब है कि भवरा दूल्हे के गार्डन से फूलों के रंग लेकर आया है ताकि दुल्हन की मेहंदी का रंग और भी बढ़ जाए। तो अब ये गाना फिर से एक बार सुनते हैं। जब गानों के मतलब समझ में आते हैं ना तो गाने सुनने में और भी मजा आता है। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: नंबर हो।
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है आज, किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेगी यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स हैं ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, आय हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी, आपके बचपन की, आपके स्कूल की, और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की, तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में ही नहीं होता।
1: और कहीं क्या हम तुमसे तुमसे
2: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर। और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया।
1: All is well. RJ and Nanaka morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ Adnan आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है। मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा। तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DM कीजिए का इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: जागिए श्रीमती जी, आंखें खोलिए।
1: क्या चाहिए?
0: अरे भाई देर हो गई।
1: तो मैं क्या करूं?
0: कॉफी, कॉफी चाहिए।
1: कॉफी, कॉफी और मैं।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, NH5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

के रहिएगा वरना वो भी आपको किसी दिन ऐसे ही डसेंगे। बाय द वे ऐसा भी कहा जाता है कि बिहार इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स दैट्स प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूपीएससी कैंडिडेट्स आई थिंक इन द फेक कैटेगरी आल्सो। देखो फेक आईएएस बनना इजी है क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक का टेंशन ही नहीं है और लोग अक्सर कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, आई थिंक इट शुड बी मेक इट टिल यू फेक इट। सो थोड़ा बच के रहिएगा, वैसे ऐसे आईएएस ऑफिसर तो कम ही रहेंगे लेकिन बच के आपको उन जैसे आसिन के सांपों से रहना पड़ेगा, समझे।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया

0: जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर। और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते हैं, क्योंकि जब से टैग देना शुरू किया है तब से मैं और मेरी तन्हाई बचे आपस में बात करने के लिए। मैं पैसा कमाता हूँ, टैक्स में गवाता हूँ। मैं खर्च करता हूँ, फिर भी टैक्स में गवाता हूँ। मैं सामान खरीदता हूँ, टैक्स देता हूँ। बैंक में रखता हूँ तो भी टैक्स देता हूँ। म्यूचुअल फंड से निकालता हूँ तो भी टैक्स भरता हूँ। घर पर रहता हूँ तो भी टैक्स देता हूँ। सब छोड़ छाड़ के मोह माया से दूर जब सड़क पर आता हूँ तो टैक्स देता हूँ, रोड टैक्स। और मैं गाड़ी चलाता हूँ तो टोल टैक्स भी देता हूँ। नौकरी करता हूँ तो इनकम टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स। और अगर बिजनेस करता हूँ तो इतना काटा गया हूँ कि कट कट कट के खरबूज बन चुका हूँ। आम आदमी की जिंदगी में कमाई इतनी नहीं है जितनी उसको टैक्स पे करना पड़ता है। और बदले में क्या मिलता है? एकदम नई नई सीख, गड्ढो वाली सड़क, खराब पानी और पोल्यूशन से भरी हुई हवा। बस टैक्स के बदले यही तो मिलता है। खैर, अब मैंगो मैन यानी कि आम आदमी करे तो करे क्या, आखिरकार उसको जाकर वापस से टैक्स ही पे करना है। सो कमाई जरूर कीजिएगा और टैक्स भरते रहिएगा। देखो बात कुछ ऐसी है कि टैक्स भरना अच्छी बात होती है, लेकिन बदले में कुछ अच्छी चीजें तो मिलनी चाहिए ना। वो कब मिलेगी वो तो नहीं पता, लेकिन बदले में आपको एक अच्छा गाना सुनने मिलेगा, वो अभी मेरे इस शो में। स्टे ट्यून्ड।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

जब हमें पानी नहीं मिल रहा था तो हम चिल्ला रहे थे पानी चाहिए पानी चाहिए, और जब मिल रहा है तो फिर पानी वेस्ट कर रहे हैं। कब सुधरोगे यार आप? तो बात कुछ ऐसी है कि सिटी अपडेट में एक इम्पोर्टेंट अपडेट लाया गया कि महानगर पालिका आयुक्त अमोल येडगे सर जी ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की है। कोई भी पानी का गैर इस्तेमाल करेगा और पानी यूं ही फेंक देगा तो उनके ऊपर 5,000 से 25,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। जी हाँ, कैसा था पिछले साल तक पानी की बहुत कमी थी अपने शहर में, 8 दिन में 10 दिन में एक बार पानी आता था, तो इस साल से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और बहुत सारे एरियाज में 4 से 5 दिन में या 3 दिन में एक बार तो पानी आता ही है। अब पानी आ रहा है तो लोगों को इसकी कद्र नहीं रही और यूं ही वो सड़कों पर बालकनी में गाड़ी धोने में यूं ही वो पानी वेस्ट कर रहे हैं। और ऑलरेडी ना बारिश इस साल कम है तो पानी की कमतरता हो सकती है, तो इसी बात की फिक्र करते हुए 5,000 से 25,000 रुपए तक का फाइन आप लोगों से वसूल किया जा सकता है। सो बी सेफ बी केयरफुल। फिलहाल 15 दिन तक अवेयरनेस के लिए काम होगा, अगर उसके बाद भी आप लोग नहीं सुधरे तो आपको फाइन पे करना ही पड़ेगा। क्या है ना, जब तक हम लोग फाइन कुछ पे नहीं करते तब तक हमें समझ में नहीं आता, तो इसीलिए पानी इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं कि मत करो लेकिन जितनी जरूरत है उतनी ही करो और यूं ही पानी सड़कों पर मत फेंको, फिर कल को पानी अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम लोग ही चिल्लाते हैं कि यार पानी नहीं दे रही महानगर पालिका, और जब देती है तो ऐसा फेंक देते हैं। तो बी केयरफुल, सुजान नागरिक बना एंड स्टे ट्यून्ड।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होमियोपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। गानों के किस्से तेरे भी हिस्से में आरजी अदनान आपके साथ है और आज हम बुमरो इस गाने के बारे में बात करेंगे। वैसे बुमरो का मतलब होता है भवरा। ये कश्मीर गाना तो एक लोक संगीत है जो कि शादी से पहले मेहंदी पर गाया जाता है और इस गाने का मतलब होता है कि वो शुक्रिया अदा कर रही है भवरे का जो कि बगीचे से रंग लेकर आया है। गाने की कंपोजिशन ली गई है बोम्बर ता यंबरजल, ये कश्मीर के पहले ओपेरा से। यंबरजल इसका मतलब होता है नरगिस का फूल और बम्बर भी यानी के भौरा। इस गाने का मतलब है कि भौरा दूल्हे के गार्डन से फूलों के रंग लेकर आया है ताकि दुल्हन की मेहंदी का रंग और भी बढ़ जाए। तो अब ये गाना फिर से एक बार सुनते हैं। जब गानों के मतलब समझ में आते हैं ना तो गाने सुनने में और भी मजा आता है। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड विद आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: लगता है स्पेशली मिठाई की जो दुकान है ना, तो उनके ऊपर बारीक से बारीक नजर रहने वाली है और होनी भी चाहिए यार। हर साल हम देखते हैं कि कितनी मिलावटी मिठाई, खवा हो, मिठाई हो, गुलाब जामुन हो, पेड़े हो, हर एक चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो यही सब गड़बड़ इस साल ना हो और फेस्टिवल सीजन में हम रियल और अच्छी और फ्रेश मिठाई खा सके, इस वजह से FDA ने फैसला लिया है। तो मिलावट करने वाले गैंग जरा बच के रहिएगा, कब आपका कट जाएगा ना और आपको पता भी नहीं चलेगा, सीधे आप हवालात की हवा खाते हुए नजर आओगे। तो इसीलिए सारी मिठाई वाली दुकानों से दरख्वास्त है कि आप भी जो माल रखते हो ना, समझ गए ना कैसा रखना है, एकदम फ्रेश रखना है, वरना थोड़ी सी भी गड़बड़ तो पूरा बिजनेस आपका खराब हो सकता है। सोचिए फेस्टिवल सीजन में बिजनेस खराब हो जाए, अच्छा नहीं ना। तो इस वजह से रूल्स और रेगुलेशन के तरीके से सामान बेचिएगा और मिलावट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना एक मिलावट के चक्कर में आपका नुकसान बहुत बुरा हो सकता है। और हाँ, आप सभी से दरख्वास्त है, आप भी अगर किसी दुकान से खरीदी कर रहे होगे, वहां पर चेक कीजिएगा कि जो मिठाई वगैरह मिल रही है वो फ्रेश है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ नजर आती है तो FDA की हेल्पलाइन पर आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, www.fosco.fssai.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। या तो फिर आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कीजिए 1800-222-365, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर FDA की हेल्पलाइन नंबर है ये 1800-222-365। याद रखिए, सेफ रहिए एंड सुनते रहिए
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

So, बात कुछ ऐसी है कि यार आप सभी ने तो एक न्यूज देखी होगी कि समुद्रात बुडूनना तर 8 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झालाय. ते सहलीसाठी गेले होते आणि त्यांना पाण्याचा अंदाज आला नाही आणि तिथे त्यांचा बुडून मृत्यू झालाय. सो ऐसी घटनाएं बहुत होती है. क्या होता है ना, देखो एक जवानी का जोश होता है, एक बढ़ती उम्र होती है और हमें लगता है यार इतनी तो खतरे की बात नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे, हमें बहुत आता है, हमें मत ज्ञान दीजिएगा, हमें मत सिखाइएगा, आप कौन होते हो हमें टोकने वाले, मैं तो वहां तक चला ही जाऊंगा. क्या है ना, ऐसा जब हम घूमने वगैरह जाते हैं ना किसी फ्रेंड सर्कल के साथ अपने ग्रुप में ट्रिप पर, और जब पानी वगैरह होता है तो ऐसे सारे थॉट्स आते हैं आपको. वहां के लोकल लोग, बाकी लोग भी कहते हैं कि यार ज्यादा दूर मत जाइएगा, लेकिन वो जोश होता है और वो कभी जोश ठंडा गिर जाए और आपकी जान चली जाए पता ही नहीं चलता. अब देखो, और वहां पर डूबकर 8 बच्चों की जान चली गई. एक छोटी सी गलती ना जिंदगी भर का बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है. और ये बस एक जगह की न्यूज नहीं है, ऐसे बहुत सारे जगहों पर होता है. फिलहाल लॉन्ग वीकेंड है, फेस्टिवल सीजन है और छुट्टियां है, तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे घूमने के प्लान्स बना रहे होंगे, कहीं समंदर में बीच के किनारे जा रहे होंगे, किसी पहाड़ पर जा रहे होंगे. तो एक बात याद रखिएगा भाई, जेन्युइनली याद रखिएगा, सबसे कह रहा हूं मैं भाई, तुझसे भी कह रहा हूं दीदी, तुझसे भी कह रहा हूं, अगर आपको किसी जगह का कोई अंदाजा ना हो, आपको पता नहीं कि यार आगे क्या है, तो प्लीज रिस्क मत लीजिएगा. अब ये सारी बातें तो आपके पेरेंट्स, टीचर, हर कोई समझाता है और वो होता है ना एक माइंड कि यार तू भी क्यों बता रहा है, हमको सब पता है, मेरे को मत सिखा. मैं सिखा नहीं रहा हूं भैया और दीदी, मैं आपको भी नहीं सिखा रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं. देखो 8 बच्चों की जान चली गई एक साथ, उनके पेरेंट्स पर क्या बीतेंगी, उनके साथ जो उनके दोस्त थे उनको तो लाइफ टाइम का सदमा ही बैठ गया कि यार एक गलती से इतनी बड़ी सजा उन्हें मिल गई है. तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ ना हो और ऐसी दुर्घटना का शिकार आप लोग ना हो, इसी वजह से हम सभी लोग आपसे कहते हैं कि यार प्लीज, कहीं आप घूमने जा रहे हो ना तो अगर कोई जगह की इन्फॉर्मेशन ना हो तो वहां पर हीरो बनकर आगे जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एक गलती से पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है. समझे, बी सेफ बी केयरफुल, इतनी बात आपसे करनी थी. स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM. ओनली ऑन MGM 90.8.

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है, आज किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेगी यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स है ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, आय हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी, आपके बचपन की, आपके स्कूल की, और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की, तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: पता
1: नहीं।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।